0: है लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
8: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच।
1: क्यों रे चले, झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी, सच।
0: थैंक यू वेरी मच। मन

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावे।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

होए ता लिखिए लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, साला ही साला एती सुरत न पाया नदियां।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहण जाई।

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए।

0: Of Europe and the UK, travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
1: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: ड्रीमिंग ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
4: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
5: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. This is Like a Gold.

0: लीजिए, ये थी रफी साहब की आवाज़, साथ दे रही थी आशा भोसले, म्यूजिक बाय आरडी बर्मन, और उससे पहले आपने सुना चांदनी फिल्म का गाना जिसमें शिव हरि का म्यूजिक था, यश चोपड़ा की फिल्म थी और श्रीदेवी ऋषि कपूर ने काम किया था। दो गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। आज है फ्राइडे का दिन और आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और मैं हूँ ऋतु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। 1 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या हालचाल है, ठीक ठाक है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? आज भी मौसम गर्मा गर्म रहने वाला है, लेकिन यहाँ के मौसम की ये खासियत है कि दोपहर में चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, एटलीस्ट शाम और सवेरे तो अच्छा मौसम रहता है, अच्छी ठंडक रहती है। कल भी अच्छा था शाम के टाइम पर, और आई एम होपिंग कि आज भी रात को टेम्परेचर कम हो जाएगा और हम सब चैन की नींद सो पाएंगे। इस बारे में बातें होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आपको याद दिला दे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.2 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. लेकिन जून महीने के खत्म होने से पहले पहले आप 75 पाउंड्स का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज भी फीफा वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैचेस खेले जाने वाले हैं। आज ग्रुप एफ में ट्यूनिशिया और नेदरलैंड्स की टीम ऑलरेडी शायद खेल रही हैं 1-3 से। मुझे स्कोर्स का तो इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैं इसको फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको बता दें कि जापान और स्वीडन की टीम्स आज भिड़ेंगी। आज पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स के बीच में मैच होगा। सेनेगल और इराक की टीम्स आज खेलेंगी। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप देखने के साथ साथ आप ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Price check for Rubber Duck on aisle 5, please.
5: Check your pay and tax before payday on the HMRC app. You can see how much you'll take home this month, which is handy for planning how to spend it. Oh, a tiramisu! To check your pay and tax, download the HMRC app. You're on it.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: वेलकम टू द जंगल।
2: फिल्म बिल्कुल फेक,
1: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
5: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में?
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
8: Are we there yet?
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
9: How? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
11: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
12: T's and C's apply.
13: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
14: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
13: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
14: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
13: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
14: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
13: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
15: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
16: ड्रीमिंग ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
17: London, good news. Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Carry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
18: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
19: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता जी की आवाज में था ये गाना और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी स्मिता पाटिल के लिए जिन्होंने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ये गाना बड़ा ही मशहूर हुआ था। इनफैक्ट इस फिल्म के सारे गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और इस फिल्म को पसंद तो किया गया अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल और दिलीप कुमार के लिए। दिलीप कुमार के फैंस ने इस फिल्म को खूब देखा क्योंकि दिलीप कुमार साहब का क्रेज़ अपने ज़माने में भी था और जब तक उन्होंने फिल्में की तब तक उनका क्रेज़ वैसा ही बना रहा। इस गाने को आप सबने पसंद किया है, आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: बिल्कुल सही सुना आपने, ये है रवि शर्मा जी का मनोरंजन प्रोग्राम जहां पर आज ऋतु शर्मा, इस पूरे वीक ऋतु शर्मा आपके साथ रही और अगले वीक भी मैं आपके साथ रहूंगी क्योंकि रवि शर्मा जी हॉलिडे मना रहे हैं और सबको ये मौका मिलना चाहिए, हॉलिडे ज़रूरी होता है लाइफ के लिए, तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ और आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम और बड़े ही प्यार के साथ आपने ढेरों मैसेजेस भेजे हैं तो चलिए डालते हैं उन पर एक नजर। सबसे पहले मैसेज भेजा है हमारी जासू जी ने, कहती है ऋतु क्या आज आप टाइम पर आ गई हो काम पर? बिल्कुल, आज तो मैं 40 मिनट्स अर्ली आ गई थी, मैंने सोच के रखा था कि आज तो मैं टाइम से बहुत पहले ही पहुंच जाऊंगी क्योंकि आप पहले आ जाओ, मैं अक्सर ही बहुत जल्द आ जाती हूं ताकि मैं अपने शो को अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ और जब आप लास्ट मोमेंट पर आते हैं तो ऑब्वियसली हमें ही मुश्किल होती है, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं रहा, थैंक गॉड, भगवान की कृपा है कि मैं बिल्कुल टाइम पर आ चुकी हूँ। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। एंड राजीव पटेल जी, आपने बताया कि आपके डैड ने कल, डॉक्टर धानजी भाई ने बहुत ही मज़े के साथ सूरत गुजरात में अपनी 100वीं बर्थडे सेलिब्रेट की है और आपकी मदर ने उनके साथ केक काटा है विच इज़ अमेजिंग। 100वीं बर्थडे उन्होंने मनाई है, ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हर इंसान को ये वाला आंकड़ा पूरा करने का मौका नहीं मिलता है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई है और हम चाहते हैं

बजाऊं। थैंक यू नरेंद्र पांचाल जी, हैरो से महेंद्र जी, महेंद्र पटेल जी, अर्जुन जी, मिस्टर शेख, भरत गंगाराम जी कहते हैं, मैंने पूछा ना हालचाल कैसे है तो कहते हैं हालचाल बहुत गर्म है ऋतु जी। ये हाल तो भरत जी हम सभी का है, सभी की हालचाल आजकल बहुत गर्मा गर्म है। लेकिन कुछ ही दिन की बात है, यहाँ तो हमेशा ठंडक रहती है, ये थोड़ी गर्मी है, इसे इंजॉय करो, कंप्लेन नहीं करने का। मुझे पता है आप कंप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ अपने हालचाल बता रहे। थैंक यू, थैंक यू मृदु जी, निर्मला जी, रानी जी, वियाना मैंने सॉरी सुन रहे, हेतल सोलंकी, तोची जी, सहर, चंदू शाह हमारे साथ है, तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए बढ़ जाते हैं आगे और सुनाते हैं आपको आज के प्रमुख समाचार। तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है भारत से। भारत सरकार का बड़ा फैसला है कि इंडियन यूजर्स का डेटा अब देश से बाहर नहीं जाएगा। आज सरकार ने डेटा प्राइवेसी को लेकर एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। इन नियमों के मुताबिक अब जितनी भी टेक और सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उन्हें भारतीय यूजर्स का पर्सनल डेटा भारत के अंदर ही स्टोर करना होगा। इसे देश से बाहर भेजने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम देश की सुरक्षा और लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर उठाया गया है। बिजनेस को आसान बनाने के लिए सरकार ने आज टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा सुधार किया है। सालों से चले आ रहे जटिल लाइसेंस राज और कड़े नियमों को काफी हद तक खत्म या आसान कर दिया गया है। इससे नई कंपनियों को मार्केट में आने का मौका मिलेगा और जो पुरानी कंपनीज हैं वे अपनी सर्विसेज को और बेहतर कर पाएंगी। आम जनता के लिए इसका मतलब है कि आने वाले समय में बेहतर नेटवर्क और बेहतर इंटरनेट स्पीड। पूरे 7 दिन के बाद टेलीग्राम ऐप की वापसी भारत में हो गई है। पिछले हफ्ते कुछ टेक्निकल और लीगल इन्वेस्टिगेशंस के चलते मैनेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थाई रोक लगा दी गई थी। आज पूरे 7 दिनों के बाद टेलीग्राम की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने पर टेलीग्राम को दोबारा पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। कंपनी ने सरकार की सभी गाइडलाइंस को मानने का भरोसा दिया है, जिसके बाद यूजर्स अब बिना किसी रुकावट के ऐप का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन और नए नियमों को लेकर कई तरह की अफवाहें, फेक न्यूज उड़ रही थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। आज विदेश मंत्रालय ने इस पर साफ साफ स्टेटमेंट जारी किया है। सरकार ने कहा है कि नियमों में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे आम जनता को परेशानी हो, बल्कि वेरिफिकेशन की प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाया गया है। और अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए परफेक्ट है। ये भारतवासियों के लिए खबर है। आज सुबह सराफा बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में हो रहे बदलावों की वजह से घरेलू बाजार में भी कीमतें काफ़ी नीचे आ गई हैं, जिससे शादी ब्याह के सीजन की खरीदारी करने वालों को बड़ी ही राहत मिली है। और चलिए अब सुनाते हैं कुछ खबरें देश की, दुनिया की, दुनिया में क्या हो रहा है। ग्लोबल मार्केट से आज एक बहुत अच्छी खबर आई है। कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले 4 महीनों में सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आज ब्रेंट क्रूड का भाव $75 प्रति बैरल के भी नीचे स्लिप कर गया है और इसका सीधा असर आने वाले दिनों में भारत सहित दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। चाइना से खबर आ रही है कि चाइना के शहरों में अब इंसानों की जगह रोबोट्स कर रहे हैं डिलीवरी। टेक्निक के मामले में चाइना ने आज एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। चाइना के कई बड़े और हाईटेक शहरों में आज से कमर्शियल लेवल पर रोबोटिक डिलीवरी की शुरुआत हो गई है। इसका मतलब है कि अब खाना, ग्रोसरी और कुरियर पहुंचाने के लिए कोई डिलीवरी बॉय नहीं, बल्कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक रोबोट्स और बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। और उधर आपने सुना ही है, वेनेजुएला से खबर आ रही है। बुधवार को वेनेजुएला की में भीषण भूकंप आया था। आज शुक्रवार को वहां राहत और बचाव कार्य

0: अपने सबसे बड़े स्तर पर पहुंच गए हैं। आज सुबह से ही इंटरनेशनल रेस्क्यू टीमें और मलबे हटाने वाली हैवी मशीन्स ग्राउंड पर काम कर रही हैं। दुनिया के कई देशों से आज वेनेजुएला के लिए मेडिकल हेल्प और खाने पीने की सप्लाई की खेप रवाना की गई है। इस आपदा में अब तक कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 188 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। काराकास और पास के तटीय शहर ला ग्वायरा में ढही इमारतों के मलबे से नीचे से लोगों की मदद के लिए पुकार सुनाई दे रही है। वहीं कई लोग बेघर हो गए हैं, जबकि क्षतिग्रस्त और असुरक्षित इमारतों में रहने से डरे लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक पहले 7.2 तीव्रता का अर्थक्वेक आया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का इससे भी अधिक शक्तिशाली भूकंप आया, और दोनों भूकंप धरती की सतह के काफ़ी करीब आए, जिससे भारी तबाही हुई। और ये भूकंप बुधवार को स्थानीय समय अनुसार 6:04 पर आया था। खेल की कुछ खबरें आपको सुना दें। फीफा वर्ल्ड कप में इक्वाडोर ने शानदार वापसी करते हुए जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। इसी के साथ इक्वाडोर ने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बना ली है, और अब उसका सामना अगले दौर में इंग्लैंड से हो सकता है। हालांकि हारने के बाद भी जर्मनी ग्रुप ई में पहले स्थान पर कायम है, वहीं आइवरी कोस्ट दूसरे और इक्वाडोर अब तीसरे स्थान पर है। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
1: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

जी हाँ, ये है आपका मनपसंद लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस शो में रितु शर्मा है आपके साथ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और ये समय है चिंतन का, तो चलिए करते हैं आज के चिंतन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक धोबी और उसका बेटा अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। तीनों पैदल चलकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले और उन्हें देखकर हंसने लगे। बोले, देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, पास में गधा है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। धोबी को लोगों की बात चुभ गई, उसने तुरंत अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर कुछ बुजुर्ग लोग मिले, उन्होंने धोबी के बेटे को गधे पर बैठे हुए देखा और गुस्से में बोले, कैसा कलयुग आ गया है, देखो तो आज का नौजवान लड़का आराम से गधे पर बैठा है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, कितनी शर्म की बात है। ये सुनकर बेटा शर्मिंदा हो गया और चुपचाप गधे से उतर गया और उसने पिता से कहा, पिताजी आप बैठ जाइए, और अपने पिता को गधे पर बिठा दिया। कुछ दूर और चलने पर कुछ महिलाएं मिली, वो धोबी को देखकर कानाफूसी करने लगी, देखो देखो इस निर्दय बाप को, खुद तो मजे के साथ गधे पर बैठा है और इस छोटे से बच्चे को पैदल घसीट रहा है। अब धोबी और उसका बेटा दोनों परेशान हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आखिर में उन्होंने सोचा कि लोग खुश रहें, इसलिए दोनों ही गधे पर बैठ गए। और जैसे ही कुछ दूर चलकर गांव के मोड़ पर पहुंचे, वहां खड़े लोग चिल्लाने लगे, अरे जालिमो, उस गरीब जानवर पर तो रहम करो, दो दो हट्टे कट्टे लोग एक छोटे से गधे पर लदे हुए हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम लोग तो इस बेचारे की जान ही ले लोगे। थक हार कर धोबी को समझ आ गया कि आप कुछ भी कर लो, दुनिया को पूरी तरह खुश नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ इसी को बताने के लिए थी कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, दुनिया को आप कभी भी पूरी तरह खुश नहीं कर सकते। लोगों का काम सिर्फ कमियां निकालना और बातें बनाना है। अगर आप लोगों की बातों के डर से अपने फैसले बदलेंगे, तो यकीन मानिए कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जनाब, दुनिया की परवाह छोड़िए, वही कीजिए जो आपके दिल को और आपके विवेक को सही लगे। क्योंकि किसी ने कितना सच कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना।

0: चिंतन। आज की कहानी, आज का चिंतन हमें यही सिखाता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए कितनी सुंदर चार लाइनें किसी ने लिखी है कि सुनो मुसाफिर चलते जाना, दुनिया का काम है राह भुलाना। तुम हंसोगे तो वो जलेंगे, तुम रोगे तो वो हंसेंगे। तुम कुछ भी कर लो इस दुनिया में, वो हर बात में नुक्स निकालेंगे। लोगों का क्या है वो तो बोलेंगे, तुम्हारी कीमत तराजू में तोलेंगे। पर तुम अपनी पहचान बनाए रखना, भीड़ में भी अपना वजूद बनाए रखना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, किशोर दा ने इसे गाया है और ये गीत अमर हो गया है। हर किसी को यही परेशानी है आज के दिन में कि लोग क्या कहेंगे। बस उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग लोग अपना जीवन जीते हैं। कभी कभार कुछ नहीं भी होता है, लेकिन लोगों के दिखावे में बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। आप चाहे अच्छा करें या बुरा, लोग हमेशा आपकी आलोचना करने या फिर अपनी राय देने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप लोगों की तारीफ से खुश या उनकी बुराई से दुखी होने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाएगा, आपके हाथ में नहीं रहेगा। लोग सिर्फ बोलते हैं, आपके बिल भरने या आपके सपने पूरे करने वो नहीं आएंगे। इसलिए उनकी बातों को शोर समझकर फिल्टर कर दीजिए। जब तक आपका दिल साफ है, आपके इरादे सही हैं, तब तक आपको किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस गाने को भूल जाइए और जो आपके दिल में आए, जो आपके लिए सही हो, जो आपके परिवार के लिए सही हो, वही कीजिए और लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। यही था आज का चिंतन, यही था आज का विचार। आपके खूब सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं। आज की कहानी आपको पसंद आई है। कहानी छोटी सी थी लेकिन उसमें मैसेज अच्छा था, इसीलिए छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आती हूँ ताकि मैसेज समझ में आए। तो आपको पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। राजीव जी थैंक यू, कहते हैं हमें बाहरी दुनिया को देखने से पहले खुद को अंदर से देखना चाहिए और उसके अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा राजीव जी आपने, हमेशा ही आप भी बहुत अच्छे विचार हमारे साथ शेयर करते हैं। जासू जी कहती हैं बिल्कुल सच है। जगदीश जी सुन रहे हैं बुशी में, रोहित का कहना है बिल्कुल सही कहा आपने। अनिल भट्ट जी थैंक यू, आज का चिंतन आपको पसंद आया। थैंक यू गिरीश जी, कहते हैं आपके चिंतन हमें पसंद आते हैं। और आपने ये भी लिखा है कि सबको संतुष्ट करने से अच्छा है आप अपने आप को संतुष्ट करें, और जीवन एक सुखी जीवन जीने के लिए यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आप जीवन ठीक से नहीं जी पाएंगे। और एक बात याद कर रखिए कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलता। तो बस खुश रहिए ना, फालतू की बातों को जाने दीजिए, क्यों अपनी सेहत खराब करते हैं। दिनेश सॉरी जी थैंक यू, आज का चिंतन आज का मैसेज आपको पसंद आया। रमा जी हॉन चर्च में सुन रही हैं, हमारे साथ दे रही हैं। इसके अलावा और भी मैसेज हैं, सह जी, महेंद्र बजारिया, फरीदा जी थैंक यू आपके मैसेज के लिए, नलिनी जी थैंक यू, मानू जी, तृप्ति, रंजन जी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आप सब चिंतन के प्रेमी हैं और रवि शर्मा जी के साथ 50 से ज़्यादा, अब तो 50 से ऊपर हो गए हैं, सालों से चिंतन सुनते आ रहे हैं। और मेरी भी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो आपको पसंद आए, और आपने आज पसंद किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुनवाते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा गाना 80s की फिल्म से।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन गाना बजाने से पहले याद दिला दूं कि आज वन पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124.2 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू। लेकिन याद रखिए, जून के खत्म होने से पहले पहले आपको मौका मिल रहा है जीतने का 75 pounds का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज जापान स्वीडन के बीच मैच होगा, पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स मैच खेलेंगी ग्रुप डी से, और इसके अलावा ग्रुप वन में सेनेगल और इराक की टीम्स मैच खेलेंगी। लेकिन याद दिलाने कि आप भूलिएगा नहीं अपना 15 मिनट्स का फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: Yeh hai Leica Gold.

0: हमारी अनीता जी कहती हैं कि उनकी फ्रेंड का ये फेवरेट गाना है, तो चलिए आपकी फ्रेंड को डेडिकेट करते हैं। वैसे ये फिल्म भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसमें पद्मिनी कोल्हापुरी का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था और अनिल कपूर बहुत बुद्धू बने थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा ये रोल निभाया था। और मुझे याद है उनका नाम प्रेम प्रताप पटियालाई वाला, क्या नाम रखा था कमाल की फिल्म थी। और उससे पहले आपने मासूम फिल्म का गीत सुना। आपको गाने अच्छे लग रहे हैं तो भाई मेरी कोशिश यही है कि अच्छे अच्छे गाने सुनवाऊं। और वैसे भी आज फ्राइडे का दिन है, वीकेंड की शुरुआत होने वाली है, तो बस मज़े से आराम के साथ मौसम को एंजॉय करते हुए लस्सी, मैंगो शेक, मिल्क शेक, जो भी शेक है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आइसक्रीम्स पसंद है, उनका भरपूर मज़ा ले लीजिए, क्योंकि गर्मी में ठंडी चीज़ खाने का मज़ा ही कुछ हो है। वैसे तो हमारे यहाँ हमेशा ठंडक रहती है, तो हम क्या खाएं नहीं क्या, हम तो सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं, मिल्कशेक पीते हैं, लेकिन गर्मी में पीने का मज़ा कुछ अलग ही है। तो बहुत मज़े के साथ एंजॉय कीजिए। फारूक जी आपने भी ये मैंगो शेक की फ़ोटो भेज दी है, अब कर दी ना गड़बड़ी, कितना पानी आ रहा है इस मैंगो शेक के ग्लास को देख देख कर, अब सिर्फ देख सकती हूँ, पी तो सकती नहीं हूँ। एनीवेज चलिए बढ़ जाते हैं आगे और अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। यस, पीछे एक बहुत ही खूबसूरत गीत।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लीजिए इस गाने को हम प्रदीप पोपट जी को डेडिकेट करते हैं और उसके साथ साथ हमारे महेंद्र बजारिया जी, आप दोनों को ये गाना बहुत अच्छा लगा, चलिए थैंक यू आपके नाम पर जाता है। एंड सीमा क्रॉइडन से आपने भी फोटो भेज दी है लस्सी की, लस्सी है या ठंडा दूध आई डोंट नो, लेकिन उसने मुझे वो हमारे शहर वाली गाढ़ी गाढ़ी लस्सी की याद दिला दी है, जिसके ऊपर बहुत मोटी मलाई की एक परत होती है और अंदर होती है गाढ़ी गाढ़ी लस्सी। हाय हाय क्या याद दिला दी आपने मुझे, कहाँ पहुँचा दिया। अब पता नहीं कब वो लस्सी पीने का मौका मिलेगा, लेकिन यादों में खो गई उसकी। और आजकल इतनी गर्मी है, खाना बनाना तो जैसे कितना बोझ लग रहा है, तो आप भी बता सकते हैं कि कुकिंग करने में इतनी गर्मी में मज़ा आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हे भगवान ये गर्मी कब खत्म होगी। बताना चाहे तो आप हमारा नंबर तो जानते ही हैं, लेकिन चलिए हम भी आपको कुछ बता देते हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Leica Extra podcast update. तो हम आपको बता देते हैं कि लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और इस बार का टॉपिक है ट्रेडिशंस एंड ताबूज, और इसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पर भी जाकर आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Join the thousands of heat pump owners feeling warm and fuzzy.
5: I've lived here 20 years. I ain't moving, so I thought better future-proof me home.
6: We started a trend. The Old Street's applying for the government grant now.
5: With the energy it saves, I don't know what's better off, the planet or my wallet.
6: I'm Neddy's little bookworm. Says it's 3 times more efficient than our old boiler.
4: Feel all warm and fuzzy inside with a £7,500 government grant towards your heat pump at gov.uk/clean energy.
7: Eligibility criteria apply. See website for details.
1: This is Leica Gold.
8: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
9: TravelHub. Best service with unbeatable price.
10: At all protected.
9: Visit travelhubworld.com.
11: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
12: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
11: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
12: And you didn't pay those massive roaming charges?
11: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
13: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
14: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
15: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
14: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
15: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
14: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
15: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
14: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
15: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
16: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
15: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
16: Exclusive radio partner, Leica Our radio,
17: the voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
18: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
19: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
20: Location, location, location.
21: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
20: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
21: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
20: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
21: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
20: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
21: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
20: High appreciation.
21: In Dubai.
20: London. Good news. Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
22: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
23: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
24: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
25: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno LeicaGold.com pe.
26: Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: बासु चटर्जी की फिल्म चित चोर से था ये गाना। अमोल पालेकर और जरीना बहाव इस फिल्म में थे। और आपको बता दें कि जरीना बहाव बहुत सारी फिल्मों में तो नजर आई है, लेकिन कुछ कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया है और वो फिल्में अच्छी चली हैं। मुझे याद है किसी बड़े डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि तुम्हारा चेहरा हीरोइन वाला नहीं है, इसलिए तुम हीरोइन नहीं बन सकती हो। लेकिन जरीना बहाव ने उन्हें झुटला दिया, हीरोइन भी बनी और उनकी फिल्में हिट भी रहीं। और आजकल भी वो काफ़ी एक्टिव हैं, फिल्मों में, टेलीविज़न में लगातार काम कर रही हैं। अभी इनकी एक नई फिल्म आने वाली है, दरअसल वो प्रभास की फिल्म है जो तेलुगु के बड़े स्टार हैं। उनकी फिल्म है द राजा साहब, उसमें भी इन्होंने काम किया है। और अभी इनकी फिल्म आई थी रजनी की बारात, तीसरी बेगम जाट, जिसमें आप सब ने इन्हें देखा होगा। और अभी हाल फिलहाल में ही जरीना जी से जब बात की गई तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि आजकल वो बॉलीवुड से ज़्यादा तेलुगु और साउथ की फिल्मों में काम करना पसंद कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि साउथ की फिल्मों में आज भी पारिवारिक मूल्यों और फैमिली ड्रामा को अहमियत दी जाती है और बड़े ही आराम के साथ मुंबई में अपने पति और बच्चों के साथ जीवन बिता रही हैं। जरीना बहाव और अमोल पालेकर की फिल्म से लिया था ये गाना। उससे पहले लता जी की आवाज़ में मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अपने ज़माने का सुपरहिट गीत। आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर यह है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं ऋतु शर्मा सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। गुड आफ्टरनून।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो याद दिला दें एक बार फिर से कि भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं वाई SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। देन आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.35 भारतीय रुपए। लेकिन ये ट्रांसफ़र आपको हमेशा की तरह वही ब्रांच या ऑनलाइन या ऐप के थ्रू करवाना पड़ेगा। लेकिन जून के ख़त्म होने से पहले आपको 75 pounds जीतने का मौका मिल सकता है एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our gold.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
3: डेजर्ट सफारी,
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
5: Gajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
1: Discover Gajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
1: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Gajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
1: Visit gajalscouture.co.uk.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Na, na, na.
9: London. You asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
2: Latuke halo ne nandala.
9: Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
2: Meetha khara.
9: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
15: 4 beers, please, garçon!
14: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
16: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जितेंद्र और श्रीदेवी पर पिक्चराइज ये गाना फिल्म हिम्मत वाला से लिया था, और मुझे याद है कि इस फिल्म के गीतों में क्या बड़े बड़े सेट्स लगे थे देखने का अलग मजा था। और ये जमाना चला गया जो वो सेट्स लगा के बड़े बड़े शानदार लंबे लंबे खूब सारे डांसर्स को साथ लेकर गाने शूट किए जाते थे। एनीवेज ये गाना जब फिल्म आई थी तो बहुत ही बड़ा हिट हुआ था। और आपको याद दिला दें कि इस तरह के अगर आप और भी गाने यानी कि 80s और 90s के गाने सुनना चाहते हैं, स्पेशली 90s के गीत सुनना चाहते हैं, तो भाई लेजेंडरी हरी हरन लंदन आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, और उनका शो है सोल इंडिया। ये होने वाला है एट द रॉयल फेस्टिवल हॉल सैटरडे को 4 जुलाई, रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में सैटरडे 4 जुलाई को। टिकट्स अवेलेबल हैं एट southbankcenter.co.uk पर। जल्दी से टिकट्स बुक कीजिए। और इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: इस खूबसूरत गाने को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और इस गीत को गाने के लिए महेंद्र कपूर को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। वैसे तो इस फिल्म के सारे गाने ही बड़े सुंदर हैं और आप सभी को बहुत पसंद है और इस गाने को सुनकर ढेरों मैसेजेस भी आए हैं। तो चलिए ये गाना मैं आप सभी के नाम पर करती हूँ, सुनील दत्त और विमी साथ में मुमताज बिथी की एक सुपरहिट फिल्म।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.

0: शो जिसका नाम है हमारे राम, और ये होने जा रहा है 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में एट लंदन्स एवेंटिम अपोलो में, जिसमें आशुतोष राणा रावण बने हैं और राहुल भुच्चर ने राम का किरदार निभाया है। एक बहुत ही शानदार शो है और ज़रूर अपनी फैमिली, अपने बच्चों, घर के बुज़ुर्गों सबको लेकर आइए, क्योंकि जब मैंने इस नाटक के किरदारों से बात की, जो श्री राम बने हैं राहुल भुच्चर, जो शिव बने हैं तरुण खन्ना और जो रावण बने हैं आशुतोष राणा, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि सबको ये शो देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने सुनी तो होंगी लेकिन देखने का अंदाज, देखने का मज़ा कुछ अलग होता है। और हमारी जो 30 बहुत सारी रामायण है, उन सभी में से कुछ कुछ लेकर उन सभी को कंसल्ट करके इस नाटक को लिखा गया है। और स्टेज पर किसी भी चीज़ को देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए।
1: ये है Leica Gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो हॉलीडे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, दुबई घूमने जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के रेस्ट्रिक्शन सब हट चुके हैं। और दुबई के लिए अच्छी डील्स के लिए आप साउथॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर, और ये सब कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: और लीजिए, हमारे विनोद जी का कहना है कि भाई हमने महेंद्र कपूर का गाना बहुत इंजॉय किया है, तो आपका स्वागत है। और शेखर जी कहते हैं कि हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी। तो गर्मी अभी आज तो है, आई थिंक नेक्स्ट वीक टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, मतलब 26-25 में पहुंच जाएगा, बट मुझे ये नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसे लग रहा है, मैंने कहीं सुना है कि शायद नेक्स्ट वीक अच्छा रहेगा, बट देखते हैं, मौसम तो फट से बदल जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन बस यही है कि अब है तो है, क्या किया जा सकता है ना, एंजॉय करो जो भी है।
1: Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है Leica Gold 10:35 AM.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
6: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
7: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit Cashback Remortgages. mortgages.co.uk.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
8: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
9: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
8: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
10: London वालों ध्यान से सुन लो कि furniture की धमाकेदार flash sale आ गई है। शानदार Italian और German design वाले bedroom और dining furniture पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
11: लंदन। गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। फॉर आईटेक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे, साउथ हॉल UB24AX। वंस यू विजिट, यू कम अगेन एंड अगेन।

0: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
1: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
2: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
5: तो

0: 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
3: Lights on, shutters up, staff ready.
2: But today's customers don't start on the high street.
3: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
2: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
3: They walk into your competitors.
2: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50% plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: लंदन गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में. ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स. आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग. फुल अटैक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे, साउथ हॉल, UB24AX. वंस यू विजिट, यू कम अगेन एंड अगेन.
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142. 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
14: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: ककड़ी को बना दो रस्सी, कॉफी को लस्सी, टॉफी से निकालो टॉफी, एक नहीं अस्सी।
1: ये तो झूठ, ये तो झूठ, ये तो झूठ।

0: 9-11।
1: हर एक क्या मूवी थी तूफान। इसमें एक चीज मैंने नोटिस की कि किशोर कुमार जी का एक फाइनल गाना था इस फिल्म में। ये तो मनहर उदास जी हैं फॉर अमिताभ बच्चन, बट द टाइटल ट्रैक आया तूफान वॉज द लास्ट सॉन्ग किशोर कुमार सैंग फॉर एन अमिताभ बच्चन मूवी बिफोर हिज डेथ। एंड डिस्पाइट हिज मासिव कॉन्ट्रीब्यूशन, किशोर कुमार's नेम वॉज एक्सीडेंटली ओमिटेड फ्रॉम द फाइनल क्रेडिट स्क्रॉल। कैन यू बिलीव दैट? डिड यू नो दैट? ये फिल्म थी तूफान और अमिताभ बच्चन जी की फाइनल ड्यूअल रोल का किया था इन्होंने ट्विन ब्रदर्स एंड डायरेक्टेड बाय केतन देसाई। उनके लिए भी एक आखिरी कोलैबोरेशन थी।
2: Another huge giveaway is coming. Like a radio network.
1: I love this song. Asha ji ne kya gehri chaal, film ka gana hai 1973 ka. Par suniyega.

Hope you're enjoying all the songs. Next one, हम एक स्पेशल गाना डेडिकेट करते हैं. ये शाम भीगी भीगी है, उसका जो शूटिंग हुआ था उस गानों का वो बारिश में हुआ होगा. जो नेक्स्ट गाना है फॉर रमा जी.

evergreen song, लता मंगेशकर एंड मन्ना डे. दत्ताराम का संगीत है, हसरत जयपुरी की लिरिक्स.

कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: जिंदगी वहां सार्थक माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स.
1: Great news, Thadikalal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadikalal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Thadikalal Rainers Lane.
2: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟਪੋਟ ਕੀਤਾ.
3: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
2: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ.
3: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
4: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
5: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ.
2: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Chalo jaiye ek nava safar par.
9: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे. कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार ए सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स.
10: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ,
9: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे. वधु माहिती माटे
10: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
9: 0116266481 पर. वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर.
11: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208907244. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208907244.
12: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208767-7627.
13: काजल्स कटियर फॉर एवरी सेलिब्रेशन, एवरी मोमेंट एंड एवरी अनफॉरगेटेबल एंट्रेंस.
14: डिस्कवर काजल्स कटियर साउथ हॉल, द ग्रैंड न्यू डेस्टिनेशन फॉर एलिगेंस एट 159 द ब्रॉडवे.

0: कितनी चुलबुली आवाज है मुनव्वर सुल्ताना की. I thought you'd love it for a Friday, sizzling Friday. It'll make you smile. This is for Simon Yusuf. Yes. हवा चले कैसे? लोग इस गर्मी में हवा ढूंढते रहते हैं. एंड हवा के झोंके की माफक एक लड़की आ गई है यहाँ पे, जिसका नाम है रेडियो वाली. जी हाँ,
1: वाली आपको देख के ना गर्मी और बढ़ जाती है मौसम की.
0: और हम यहाँ पसीने से रेबजेब हो गए आपको देखकर. हवा का चले कैसे, हवा का झोंका आ गया रेडियो वाली. फिल्म है दाग.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: यस, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए, क्या बात है। इसका मीनिंग, द लिरिक्स एंड एवरीथिंग अबाउट द सॉन्ग हैज बीन सो ब्यूटीफुल एंड द बीट इज अमेजिंग। छैला बाबू, दैट इज द नेम ऑफ द मूवी, एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत एंड आनंद बख्शी की लिरिक्स, दैट मेक इट रिचर विद कुमार सानू एंड आशा भोसले क्रूनिंग विद द ब्यूटिफुल म्यूजिक। एंड द फर्स्ट सॉन्ग हमने दिल से, पहले तो दिल से रेडियो था, अभी लाइका गोल्ड पे फिल्म सैनिक का 1993। इंतशाब जी, आपकी नज़र, बिकॉज आपने बहुत इंतज़ार किया था, सो इसलिए आपको सलाम और नमस्ते। एंड ये गाने हम आपको सुनाए, जो आपको अच्छे लगे हमें बताइएगा। एंड अब कंपटीशन का टाइम है। लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद जेज एंटरटेनमेंट फॉर अ चांस फॉर यू टू विन टू टिकट्स टू द गुजराती स्टेज कॉमेडी। एंड द स्टेज कॉमेडी इज सखना रेजो हस्बैंड जी फीचरिंग लीना शाह एंड समीर शाह। इतना खूबसूरत मैंने वीडियो देखा, पूरी टीम बुधवार को लैंड हुई जब एयरपोर्ट पे, इन्होंने अच्छा सा वीडियो भेजा था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। जय कोटेक जी, थैंक यू फॉर कीपिंग अस इन्फॉर्म्ड। इट टेक्स प्लेस ऑन संडे 28 जून एट 2:30 PM एंड 7 PM। दो शोज है एट पीपल सेंटर इन लेस्टर। सो दीज टिकट्स आर वैलिड फॉर द 7 PM शो। आई want to repeat that, क्योंकि फिर गलती हो जाए और आप 2:30 बजे वहाँ पहुँच जाए और फिर बोलेंगे मैंने तो कॉम्पिटिशन जीता था। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 7 बजे का जो शो है उसकी कॉम्पिटिशन है। द विनर्स विल बी एबल टू कलेक्ट टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू रिसेप्शन ऑन द इवनिंग ऑफ द शो। ऑफकोर्स TNCs अप्लाई। नाउ आपको क्या करना है, सेंड द वर्ड हस्बैंड, यस हस्बैंड विद द नेम, योर नेम, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। नेम, टेलीफोन, ईमेल आईडी, नेम, टेलीफोन, ईमेल आईडी। ओके, सो प्लीज आप वेन्यू पे जाएंगे तो कैरी योर आईडी फॉर सिक्योरिटी, सो दैट आगे गड़बड़ ना हो। 7 PM का शो है एंड आपको सिर्फ लिखना है, लाइक आई सेड अर्लियर, यू गॉट टू जस्ट राइट द वर्ड हस्बैंड and then your name, telephone number and your email ID. End of the hour, I shall announce the winner. Good luck!
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can get you up to 124.35. 124.35 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: ये है
3: लाइका गोल्ड।
1: जब मैंने कंपटीशन की बात की थी तो ऑफकोर्स यू विल बी सेइंग मैसेज हम कहां पहुंचाए, जो आपको लिखना है हस्बैंड विद योर नेम, your full name of course and your telephone number and your email ID. You can send them to 07404793719 or 07424232323. Good luck.
0: Laika Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
1: Oh boy, it's going to be a busy evening. 8 p.m. Norway versus France. That's Group I. Group I may Senegal versus Iraq. That's also at 8 p.m. You make the choice which match you want to watch. And we got Cape Verde versus Saudi Arabia. That's Group H. And that is at 1 a.m. Or you can watch Uruguay versus Spain. That's also Group H at 1 a.m. And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, RackLaw, if you mention Leica.
2: This update was sponsored by RackLaw Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest station store.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Gorgeous Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
5: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
6: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
5: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
6: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
5: Visit Gorgeous Couture .co.uk. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
7: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
7: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
7: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
7: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
8: London, the wait is over.
9: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
8: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
9: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
8: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
9: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
8: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
10: Haldiram's. Dreaming of paradise?
11: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
10: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
11: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
10: At all protected.
11: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
12: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: London, good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय. और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
15: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
16: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
17: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
18: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
1: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
6: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 02031299840। TW Pays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत।
7: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लखाई रह्यो छे।
8: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
7: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर,
8: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
7: दर्शन पण अने यूरोप पण।
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
7: कॉल 02089002323 The Star Tours.
8: Travel once and you will travel again and again.
9: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
10: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
11: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: एविक्शन, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। दैट्स 0208-907-2444।
0: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
3: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: वही जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, सभी लोग आके अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। टुडे इज फैंटास्टिक फ्राइडे, आज अश्विनी बन गई है डीजे अश्विनी। खाना पीना कर लिया, कैलोरीज बर्न करने के लिए रेडी? नहीं तो अभी फटाफट खा लो, क्योंकि अभी पूरे ये तो 3 घंटे आप और हम पूरा ये जो समय साथ में यहाँ पे बिताते हैं ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर में, तो होता ये है कि आप अपने काम काज करते हुए जनरली रोज रेडियो सुनते हैं, लेकिन आज वैसा नहीं होगा। रीजन, क्योंकि डांस मस्ती चलती रहेगी ना, कहाँ आपको टाइम है और कुछ करने के लिए। पूछिए आप सबसे, कैसे हैं आप सब? आई नो गर्मी है, बहुत गंदी वाली गर्मी है। बस कल का दिन संडे से पक्का वाला प्रॉमिस है, मैं पक्का प्रॉमिस बता रही हूँ आप सबको, एकदम बढ़िया मौसम हो जाएगा ना। बस आज का दिन तो निकल गया, बस कल का ही दिन है, कल थोड़ा बेरेबल रहेगा। ओके, तो हो जाएगा, कल का दिन भी अच्छे से निकल जाएगा। हमेशा की तरह असाइनमेंट और सवाल, फ्राइडे है तो थोड़ा मस्ती भरा सवाल, और सवाल ये है कि जब भी आपको इन्विटेशन आता है किसी से, वो इन्विटेशन कैसे टालते हैं आप? ओके, जब भी कोई आपको इनवाइट करता है और आपको नहीं जाना है तो कैसे टालते हैं आप? अच्छा, विथ मोस्ट ऑफ द एशियन पीपल जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे नादान से, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके नाम से कितनी बार बिल फटता है, सो मोस्ट ऑफ द एशियन पेरेंट्स जब उनके बच्चों का 11 प्लस होता है, पूरे साल भर वो ये एक्सक्यूज यूज करते हैं, हमारे बच्चों का तो 11 प्लस है, एंड दे डिनाई द इन्विटेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम। आप इन्विटेशंस कैसे डिनाई करते हैं मुझे बताएं। आई नो हर किसी का अपना अपना एक रीज़न रहता होगा कुछ बताने के लिए, लेकिन बताइए, चलिए आज जानना चाहती हूँ मैं। ओके, एंड थोड़ी ही देर बाद में आपको सुनाने वाली हूँ लाइफ से रिलेटेड और एक जबरदस्त थ्योरी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling could get you up to 124 Indian rupees and 35 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. And seas apply.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Gold.
4: Ay ay ay, suku suku.
5: Ay ay ay.

0: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
2: फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप एफ में जापान और स्वीडन के बीच फुल टाइम हो चुका है, दोनों ने एक एक गोल दागा। नेदरलैंड्स एंड ट्यूनिसिया के बीच फुल टाइम हो चुका है, नेदरलैंड्स ने मैच जीता है, 3 गोल बनाए। ग्रुप डी में पैराग्वे एंड ऑस्ट्रेलिया में से किसी ने गोल नहीं बनाया। टर्की एंड यूनाइटेड स्टेट्स का मैच हुआ जिसमें टर्की जीता है, उसने बनाए 3 गोल्स। ग्रुप आई में नॉर्वे और फ्रांस के बीच अभी 8 बजे मैच शुरू होगा और सेनेगल और इराक के बीच 8 बजे मैच शुरू होगा। डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद स्पॉन्सर्स Rack Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: The Evening Show with Ashwini. Leica.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 22 मिनट्स पास्ट 7, 7:22, 26 जून, फैंटास्टिक फ्राइडे, यानी कि आज का मेरा इस सप्ताह का आखिरी शो। मंडे मिलूंगी, अब भी नहीं जा रही, अब भी तो शो शुरू हुआ है। अच्छा कैसा रहा पूरा सप्ताह? इज एवरीथिंग ओके विथ यू गाइज? इज देयर समथिंग जो आप लोग बात करना चाहते हैं? कोई है नहीं है ना आपकी दोस्त? बिल्कुल मैसेज कर दीजिए, नो लंबा ऐसे विद दुख दर्द पीड़ा। हाँ दुख दर्द पीड़ा है, बिल्कुल शेयर करना चाहते हैं बताइए। इफ़ आई कैन हेल्प इन एनी वे मैं ज़रूर हेल्प कर दूँगी। चलिए इस समय हम लोग रोज़ ही किसी न किसी लाइफ थियोरी पे बात करते हैं। आज की थियोरी द स्नेक बाइट थियोरी, अगर आपने सुनी है तो रिविजन, और अगर नहीं सुनी है तो बढ़िया सी है ये थियोरी, सुन लीजिए। जब भी किसी मनुष्य को, किसी इंसान को कोई सांप काटता है तो वो सांप काटने के बाद में वो इंसान उस सांप के पीछे दौड़ के उसको नहीं काटता, वो उससे जाके नहीं पूछता अरे भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्यों मेरे पीछे आया, मुझे क्यों काटा। रादर फटाफट उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है इसके पीछे सारे लोग लग जाते हैं। शॉर्ट है लेकिन क्विक है आज का थियरी। तो जिंदगी में जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम अड़चन आती है तो वाई मी, इस क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम डालने की बजाय, अपना सर पीटने की जगह, अपनी लाइफ को कोसने की जगह, जिंदगी उस टाइम पे आपको क्या सिखाना चाह रही है ये समझने की कोशिश करें। और जब जिंदगी, यूनिवर्स, भगवान, ऊपर वाला हमें कुछ लेसन सिखाना चाहता है तो ऑब्वियसली वो कोई बहुत प्लेनली तो नहीं आएगा ना, वो हमें हिला के लगता रख देता है, पूरा झंझोड़ के रख देता है, पूरा निचोड़ देता है। रीजन, कुछ सिखाना चाहती है लाइफ हमें, तो उसे दोष देने की बजाय, उससे लड़ने झगड़ने की बजाय, अगर हम ये समझ लें कि हमें इसमें से क्या लेसन लेना है और उसके ऊपर काम करना शुरू करें, अपने आप को हील करना शुरू करें, समझ जाए कि अपना प्रॉब्लम क्या है, रादर देन मसाजिंग आ ओन ईगो या अड़ियल बनने की बजाय, अगर हम समझ लें कि यार कुछ तो सिखा रही है ज़िंदगी, है ना, ज़िंदगी से वो लेसन सीखो, अपने आप पर काम करो। परफेक्ट कोई नहीं होता बाबा, कोई नहीं होता, और उस जिद पे भी ना जाए कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं कैसे दिखाती हूँ और कैसा दिखाता हूँ। नो, इट्स ओके, वी ऑल लर्न अ लेसन्स। और क्या आप सभी जानते हैं कि हम सभी जब बड़े हो जाते हैं ना, तो आपकी मेरी हम सबकी जो पर्सनालिटी है ना, ये सारी की सारी पर्सनालिटी हमारे बचपन से आती है। टिल द एज ऑफ 7 और 8 हम लोगों ने जो भी देखा है, सहा है, सुना है, हम जैसे ब्रॉटअप हुए हैं वो कहीं ना कहीं हम रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा हमारे पेरेंट्स के पास में भी कोई मैनुअल थोड़ी था भाई कि ये पेरेंटिंग ऐसी होती है, बच्चा ऐसा करे तो ऐसा करना, नो, इवन दे वर लर्निंग। सो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, आपके पेरेंट्स की पेरेंटिंग में कुछ आपको कमियां लगी, अगर आप अवेयर स्टेट में हैं तो अपने आप पे काम कीजिए ना, ग्रोथ माइंडसेट रखिए, है ना। लड़ने की जगह, झगड़ने की जगह, कंप्लेंट्स की जगह, यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अकाउंटेबिलिटी ले अपने बिहेवियर की, और अपने आप पर काम करें। सांप के पीछे नहीं भागना है, अपने आप को ट्रीट करना है, हील करना है। कैसी लगी आज की स्नेक बाइट थ्योरी, बताइएगा जरूर।
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: Search is changing.
5: Customers aren't just using Google anymore.
4: They're asking AI.
5: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
4: One business, one recommendation.
5: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
4: Will your business be the answer?
5: Or the one that got left behind?
4: The future of search has already started.
5: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
8: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Gorgeous Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
8: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
9: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
9: Gorgeous Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit Gorgeous Couture.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
13: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridge Way, Southall UB24AX. Once you visit, you come again and again.
14: You know how fans shout at football matches?
15: Oh, wake up!
14: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
16: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold or online suno likeagold.com pe.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DerryValley.net.
18: Sunno, sunno, are sunno, sunno. Hey, bhai aur behno, are matgan bhai, chakgan bhai. Saamlo, re saamlo, ora goba, o don diba, aika o.

0: मिलाने के घरिया देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 7:35। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। मैंने आप सभी से पूछा है कि भाई इनविटेशंस जब आते हैं तो आप लोग कैसे डिनाई करते हैं। मैंने इनफैक्ट ये सवाल सैंडी जी से भी पूछा तो कहते हैं भाई मैं तो बड़ा प्लेनली बोल देता हूँ कि थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग लेकिन मैं नहीं आ सकता। अच्छा, लेकिन क्या आप लोगों ने देखा है कि हमारे एशियन कल्चर में अगर जब आप कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, उसके बावजूद जो है लोग मतलब शुरू हो जाते हैं, अरे यार क्या हो गया यार, आ जाओ ना यार, मतलब फोर्सफुली हमारे यहाँ पे जो है ये एक सोशल हार्मनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कहीं ना कहीं रिजेक्शंस नहीं लेना, ये वाली भी चीज़ हमारे यहाँ पे एक आ जाती है कि लोग नहीं इस चीज़ को ले पाते। जी हाँ, तो रिजेक्शंस मतलब हर तरह के रिजेक्शंस होते हैं। ऐसे नहीं कि नौकरी में आपको नहीं मिला चांस तो रिजेक्शन है, किसी गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड ने ना बोल दिया तो रिजेक्शन, रिश्ते में रिजेक्शन, नो नो, रिजेक्शन मतलब वो ऐसे कि यार ना कैसे बोल दिया, ये कैसी चीज़ हो गई। सो इस चीज़ को बहुत बार लोग समझने की कोशिश नहीं करते कि हो सकता है सामने वाले के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। अब किसी ने मुझे लिखा कि मैंने इतने बहाने आज तक बनाए हर बार कि अब मेरे पास कोई बहाने नहीं बनाए, तो मैं चुपचाप इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती हूँ और मैं चली जाती हूँ कि हाँ भाई मैं आ रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट आवर का फीचर होता है यादों की बारात एंड दैट इज़ वन ऑफ योर फेवरेट फीचर्स। तो चलते हैं 50s का ये गीत आपके लिए, जिनके जुल्फे हैं ना बहुत सारी है ना, तो बस उड़े जब जब जुल्फे तेरी आपके लिए।
1: ये है Like a Gold, The Evening Show with Ashwini.

0: फैंटास्टिक फ्राइडे मना रहे हैं आप और हम साथ साथ यहाँ ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। द इवनिंग शो विद अश्विनी में बड़े अटपटे चटपटे सवाल भी मैं आप सबको पूछ देती हूँ, चटपटा तो नहीं लेकिन ठंडा ठंडा सवाल। सच्ची सच्ची बताना, ये पूरे सप्ताह में कितना कोल्ड ड्रिंक पिया और कितनी आइसक्रीम खाई? विथ मी नो माई गला, आई डोंट नो इफ यू रियलाइज मेरा गला, आई डिड हैड कोल्ड ड्रिंक लास्ट वीक, है ना, तो बिकॉज मौसम इतना गर्म था एंड मेरा गला इतना नाजुक है मुझे पता ही नहीं है। अब एक दो बारी कोल्ड ड्रिंक पी लिया और बस तांडव अलग शुरू हो गया गले में, है ना। तो विथ मी बहुत ठंडा और खट्टा, नो नो आई एम नॉट दैट पर्सन। आप लोग सच्चे सच्चे बताओ कितने आइसक्रीम्स के बोल्स जा रहे हैं, दे दना दन, अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स आ रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बताइए मुझे।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा। Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Great news, Tadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tadikalal Raiders Lane.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
4: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
6: Lattuke halone nandala.
4: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Meetha khara, khara. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
7: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
8: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
10: Four beers, please, garçon!
9: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
11: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 124.61 Indian rupee, 367.39 Pakistani rupee, 443.93 Sri Lankan rupee, 162.36 Bangladeshi taka, 84.72 Afghan Afghani, 170.95 Kenyan shilling and 1.32 US dollars.
13: Leica Radio.
11: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
13: LIKA Gold.
11: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £99.42 per gram.
11: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: मिला लेंगे घड़ियां एक बार फिर से, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 48 मिनट्स जी, इट्स 48 मिनट्स पास्ट 7 एंड धीरे धीरे हम चल रहे हैं पहले घंटे के आखिरी गीत की तरफ. तो अगर आप अमिताभ बच्चन के फैन हैं, हाँ, और पग घुंघरू बांध आपको अगर पसंद है, हाँ, तो डांस के लिए तैयार हो जाना, बिकॉज इस आवर का ये आखिरी गीत है. वॉल्यूम अप रख लीजिए, क्योंकि ऐसे भी धमाकेदार वीकेंड हम लोग यहाँ पे मनाते हैं फैंटास्टिक फ्राइडे में, है ना, पूरा डांस मस्ती चलते रहता है. भाई हमारा इंस्टाग्राम पेज है जो लाइका गोल्ड रेडियो का पेज है, वहाँ पे आप हमारे वीडियोस देखेंगे. मैं तो मतलब यहाँ पे चेयर पे बैठे बैठे डांस कर लेती हूँ अच्छे खासा. और फिर जो हमारा लाइका रेडियो का पेज है मैनचेस्टर का, वहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं. प्लस मेरा अपना खुद का रेडियो वाली अश्विनी, दैट इज़ माय इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे भी आपको मेरे अपडेट्स दिख जाते हैं. ऐसा है कि जब अपने जॉब को आप तहे दिल से एंजॉय करते हो ना, तो वो एंजॉयमेंट कहीं ना कहीं दिख ही जाती है. तो विथ माई जॉब आई एम इन ग्रैटिट्यूड कि मुझे एक तो यहाँ पे अपनी पसंद की प्लेलिस्ट आप सबको सुनाने का मौका मिलता है. जैसे कि सैंडी ने पूछा था 2 घंटे मिले तो क्या करूँगी, ना आई सेड मैं आरडी बर्मन के गीत प्ले करूँगी. ही इज सो फेड अप विद ऑल द आरडी बर्मन चॉइसेस आई गिव हिम एंड ही कीप्स ऑन चैलेंजिंग मी. दैट्स द फन ऑफ यू नो यहाँ पे लाइका गोल्ड फेम.
11: Ashwini, brightening up your weeknights.
14: Packed for the trip? Gifts? Passport?
15: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
14: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
15: Simzy?
14: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
16: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
17: Welcome to the jungle.
18: Film? बिल्कुल fake.
17: हमारी film army वाली.
19: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
18: Danger? एकदम real. और survival skills? Zero.
17: और star cast है?
18: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
20: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
18: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
21: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
22: मैं किस लिए फिल्म में.
23: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
24: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
23: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
24: Call 0208 706 0915 for a free, no-obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
23: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
25: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai real estate stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Haze.
26: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
27: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
26: Exclusive radio partner, Laika Radio.
1: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
26: The Evening Show with Ashwini. Feel good classics all day. Leica Gold.
3: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
4: Mm-hmm.

अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया।

0: Welcome. This is the second hour of the evening show with Ashwini on Laika Gold Radio in London and Laika Radio in Greater Manchester. 8:15. It's 8:15. और सेकेंड आवर का फीचर होता है इमोशन ऑफ द डे. तो फैंटास्टिक फ्राइडे ये जो फीचर है इस आवर में हम आपके लिए एक स्पेशल गीत प्ले करेंगे. अब जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो मुझे मोस्ट ऑफ द लिसनर्स कहते हैं अश्विनी हमें तो पूरा का पूरा ही फैंटास्टिक फ्राइडे पसंद आता है बिकॉज सारे ही गीत ऐसे हैं कि हम अपना पैर तो थिरकाना बंद ही नहीं कर सकते. भाई ड्राइविंग करते करते पैर थिरका रहे हो तो प्लीज़ ना थिरकाओ, अपने हाथ स्टेयरिंग पे भले थिरका लो क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना. तो इसीलिए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें. बिल्कुल आपका मनोरंजन यहाँ पे करने के लिए आ जाते हैं सारे प्रेजेंटर्स और मेरी ऐसी पूरी कोशिश होती है कि जो भी शो मैं आपके लिए करूँ वो बड़े ही मनोरंजनात्मक हो. आई लव माई हिंदी एट टाइम्स एंड मैं बड़े बड़े ऐसे जब हिंदी वाले शब्द यूज़ करती हूँ तो सैंडी एंड मी हम लोग ना बहुत मज़ा आता है. मैं जान बूझ कर ना बड़े बड़े हिंदी वाले शब्द उनके सामने यूज़ करती हूँ. आई थिंक देखिए जब आप अपने कलीग्स के साथ मज़ा मस्ती करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, गपशप करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. यू नो कोई भी वर्क प्लेस जो होती है वहाँ पर जब एक हार्मोनियस एटमोसफियर होता है तो आई थिंक थिंग्स आर रियली गुड. अच्छा आप में से कई लिसनर्स जो है आप लोगों के साथ में इतना मज़ा आता है मुझे इंटरेक्शन में. जो हमारे वन ऑफ द लिसनर्स हैं वो हमेशा इमोजीज भेज के बातें करते हैं तो मैंने कहा भाई कभी तो सेंटेंस लिख लिया करो. तो उन्होंने फाइनली आज 2 सेंटेंस लिखे पहली बार. हाँ तो मैंने कहा आज तो मैंने 11 पाउंड्स का चढ़ावा भगवान को चढ़ाना घर पर जाके कि देखो इन्होंने 2 सेंटेंस लिख के हमको भेजे. हमारे और एक प्यारे लिसनर है वो हमें कहते हैं कि अश्विनी कितनी बातें बनाने में तुम मतलब होशियार हो. देखो अपने गले का रीज़न देखे कहाँ आइसक्रीम तक चली गई और हमसे पूछ रही हो कि कितनी आइसक्रीम खाई. बातें बनाने के लिए तो हम यहाँ पे आते हैं, बातें सुनाने के लिए आते हैं और आपकी बातें भी सुनते हैं. ओके जी नेक्स्ट ट्रैक के लिए मैं फिर से बता दूँ कि फटाफट वॉल्यूम अप करो क्योंकि इसमें तो आप सबने नाचना ही नाचना है.
1: Tune in to Laika Gold, London's number one Asian retro station on the Laika Radio mobile app with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling could get you up to 124 Indian rupees and 35 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: Breaker Radio Network, across London, Manchester and the Midlands.
1: Like a Radio.
0: Football score updates, brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
2: Group F का मैच खत्म हो चुका है. जापान स्वीडन ने सेम गोल बनाए. टूनिसिया नेदरलैंड्स में, नेदरलैंड्स जीत चुका है. उनका फुल टाइम हो गया है. ग्रुप डी में पैराग्वे एंड ऑस्ट्रेलिया 0-0 फुल टाइम हो चुका है. टर्की और यूएस के बीच मैच हुआ जिसे जीता टर्की ने. एंड ग्रुप आई में नॉर्वे और फ्रांस के बीच अभी घमासान चल रहा है. फ्रांस ने दो गोल दागे हैं, 22 मिनट्स हो चुके हैं. सेनेगल एंड इराक के बीच मैच चल रहा है तो सेनेगल ने एक अभी तक गोल दागा है, 20 मिनट्स हो चुके हैं. और साथ में डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका. अच्छा, ये फुटबॉल गेम है भाई, मैच नहीं है यहाँ पे.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: We've all been there. Noisy uni flatmates. Music blaring. Phones going off in the library. But with long-lasting battery life on the lightweight and portable Dell XPS powered by Intel Core Ultra, you can get away from the distractions without needing to find a plug. So you can get back to, well, built for those who get things done. The Dell XPS. Built for you. Dell.co.uk/learning.
0: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410. दैट्स 0208574 8410.
6: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
10: Lattu ke halo ne nandala.
9: Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
11: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है. ओ मूवी जिने सब नु हसा हसा के लोट पोट कीता.
12: की कह रहे हो?
11: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
12: की कह रहे हो?
13: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
14: और टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया.
11: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music
12: station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
16: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
18: Hey! तुमने कभी किसी से प्यार किया?
19: किया!
18: कभी किसी को

0: ही चेसिंग बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव दिस विन के दो पॉइंट और आ जाए इनके पास देन दे विल बी लेवल विद वेस्ट इंडीज
1: जी
0: सो 57 for 2 दे आर एंड एवरीथिंग टू प्ले फॉर 88 बॉल्स में 95 रन किए सो लेट्स सी हाउ इट गोज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक फिनिश सो देन टुमारो वी गॉट पाकिस्तान अगेंस्ट नेदरलैंड्स एंड वी गॉट अनदर we've got actually a team game here tomorrow so then we got west indies against ireland and then we got england versus new zealand so it's going to be a massive day of cricket tomorrow and i hope the weather is much better
1: ji kal to weather theek rehne wala hai aur apna khayal rakhiye apne aap ko hydrated rakhiye aur jo maine aap se vaada kiya tha ki main 20 seconds mein aapko on air lungi to dekhiye maine vaada kiya wo nibhaya
0: बहुत अच्छा थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड
1: थैंक यू
0: फिर विल गिव यू ऑल द अपडेट्स
1: चलिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सी यू
0: टेक केयर
2: दिस अपडेट वाज ब्रॉट टू यू बाय TW Pays विजिट twpays.com/leica फॉर अ चांस टू विन अ फ्री कार्ड टर्मिनल T's and C's apply
3: एंड RoboThink दिस समर गिव योर चाइल्ड अ हेड स्टार्ट इन AI रोबोटिक्स एंड कोडिंग प्लेसेस आर लिमिटेड सेव 10% ऑन फुल वीक समर कैंप बुकिंग्स विद कोड LEICA10 एट पार्टिसिपेटिंग लोकेशंस बुक नाउ एट robothink.co.uk टर्म्स अप्लाई
4: Leica Gold. Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.
5: The evening show with Ashwini.

0: एक्चुअली मेरा तो कुछ काम है नहीं, तो मैं तो गई नहीं, तो मैं तो आंसर ही नहीं कर सकती इस सवाल का कि उनके आंगने में हमारा क्या काम है, मैं तो जा ही नहीं रही ना। भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। ओके, तो गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड मैं आपको सुनाती रहती हूँ। एक गुड न्यूज़ मुझे भी जो याद आई, सो टू एंड हाफ ईयर्स अगो व्हेन आई वेंट टू पुणे, जहाँ से मैं हूँ, तो पुणे में अपनी मैं शॉपिंग कर रही थी और मैं बाहर टू व्हीलर पे बैठी थी, अपनी सिस्टर का वेट कर रही थी। तो आई सॉ सम यंग बॉयज़, दे मस्ट बी इन देयर 20s, और उनके पास में कुछ ऐसे बड़े डब्बे सा था, उसमें से वो दे गॉट सम फूड एंड दे लेड इट ऑन अ पत्तल जो होती ना, लीफ का जो पत्तल होता है उस पर उन्होंने डाला। एंड जैसे ही वो बच्चे आए तो मैंने देखा कि डॉग्स जो हैं आसपास के स्ट्रीट डॉग्स, वो आने लगे और सारे स्ट्रीट डॉग्स को वो लोग फीड कर रहे थे और ऊपर से कुछ पाउडर भी डाल रहे थे। सो आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई आस्क्ड देम कि भाई ये आई कैन सी आप लोग फीड कर रहे हो, तो इज देयर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आई कैन जॉइन यू गाइज एंड आई कैन पार्टिसिपेट। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी, हम लोग सब जो है कॉलेज के बच्चे हैं, हम सब कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं हर सप्ताह एंड एवरी वीक हमारे ग्रुप्स में ड्यूटीज़ हम लोगों ने बांट ली हैं कि डॉग्स के लिए फूड बनाएंगे। एंड आई सेड व्हाट वाज दैट वाइट पाउडर जो आप ऊपर से डाल रहे थे, तो लाइक कुछ डॉग्स जो हैं उन्हें इचिंग की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेस की प्रॉब्लम है, सो वी नो विच डॉग्स दे आर, इसीलिए हम उनको फिर फीड करते समय वो मेडिसिन वहाँ पे उन्हें अंदर मतलब ऊपर से हम लोग उसमें थोड़ा स्प्रिंकल करते हैं। आई थिंक गुड न्यूज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हमारे आसपास भी जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, उसे मेंशन करना चाहिए, गुड डीड्स जो हैं। जैसे कि आई एम श्योर आप सभी अपने अपने बैकयार्ड में या फ्रंट जितने भी आपके यहाँ पे आंगन है, वहाँ पे आप लोग पानी भर के रखते होंगे, पक्षियों के लिए फूड रखते होंगे, और जो वी ऑल नो कि डोमेस्टिकेटेड फॉक्स हम लोगों के बैकयार्ड्स में घूमते रहते हैं, तो उनके लिए भी बेचारों के लिए पानी हो जाता है। ओके, और भी बहुत सारी चीजों पे बात होने वाली। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट्स, एपिसोड नंबर 22 आ गया है। और मेरी जो पड़ोसन अभी बैठी है रेडियो वाली, उन्होंने होस्ट किया है ट्रेडिशंस एंड टैबूज द प्राइड मंथ। अच्छा, इस पे बात होने वाली है इस एपिसोड में। वी एक्सप्लोर द रियलिटीज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी इन वर्ल्ड दैट इज स्टिल लर्निंग टू अंडरस्टैंड देम। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Hi, hello, public demand. पत्नी प्रीमियर लीग एटले के PPL, yes, from 3rd July till 12th of July. Wow! And this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo.
4: Patni Premier League shows at Risley, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
2: Aa September, Paris ma itihas lakhai rahyo che.
4: BAPS Mandir no opening and Star Tours tamne lai jai rahyo che ap pavitra yatra par.
2: Europe na 3-9 divas na tours.
4: France, Switzerland, Italy and Germany saathe.
2: Darshan pan ane Europe pan.
4: Seats jaldi bharai rahi che. Aaj ish book karo Star Tours saathe.
2: Call 02089002323. The Star Tours.
4: Travel once and you will travel again and again.
9: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par 181 Upper Tooting Road ya visit kijiye minarjewelers.com. Call 02087677627.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Radio Wally marks Pride Month, Truth and Taboos.
10: I felt like I had to get tougher skin from quite a younger age. But I think also like getting bullied, not bullied, but like name called, you kind of have to build that skin layer. Then like, you know, you have that family layer where you're a bit, you feel like you're a bit different. So you bring all the skin layers and you build more and more layers.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.
11: Ye hai Leica Gold.
1: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 124.54 Indian rupee, 367.27 Pakistani rupee, 443.78 Sri Lankan rupee, 162.34 Bangladeshi taka, 84.51 Afghani, 170.91 Kenyan shilling, 1.31 US dollars.
12: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now.

0: Hold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £99.42 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 8:50, 8:50। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। इस आवर के आखिरी गीत की तरफ हम आ रहे हैं। समो आई जस्ट लव दिस ट्रैक, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, सरगम फिल्म से डफली वाले। एक तो ऋषि कपूर एंड जया प्रदा की जोड़ी पे ये फिल्माया गया था एंड ऋषि कपूर वो एक्चुअली उनको वो जो डफली होती थी वो कितनी बजानी आती थी, रियली आती थी क्या? ही यूज़ टू क्या स्टाइल में, मतलब वो डफली बजाया करते थे। आई डोंट नो इफ आई रिमेंबर इट प्रॉपरली कि मैंने किसी इंटरव्यू में कोई उनका इंटरव्यू देखा था जब उन्होंने कहा था कि नहीं आई जस्ट प्रिटेंड टू प्ले इट दैट वे, बट वॉट एवर इट इज़ सो कन्विंसिंग। इफ यू कैन प्ले आई डोंट नो, आई कैन श्योरली सी कि वो कन्विंसिंग वे में डफली उन्होंने प्ले किया। तो चलते हैं इस आखिरी गीत की तरफ और उसके बाद में थर्ड आवर में मैं गजल या कवाली क्या सुनाने वाली।
0: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa or by using our Leica Radio mobile app. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
2: Welcome to the jungle.
3: Film? Bilkul fake.
2: Hamare film army wali.
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
2: और स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
5: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
6: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
7: किस लिए फिल्म में?
8: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
9: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
8: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
9: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
8: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
9: Visit Kajal's Couture. .co.uk
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
15: Apne business ko UK ke largest Asian commercial radio network par advertise karne ke liye call kare. Like our radio sales on 0207 13 1484 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
7: The Evening Show with Ashwini.
0: Laika. This is Laika.

0: Football Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: FIFA World Cup में ग्रुप एफ में जापान और स्वीडन ने दोनों ने एक एक गोल दागे, फुल टाइम हो चुका है. टूनिसिया नेदरलैंड्स में नेदरलैंड्स ने ये गेम जीता है, फुल टाइम हो चुका है. ग्रुप जी में पैराग्वे एंड ऑस्ट्रेलिया फुल टाइम, दोनों में से किसी ने कोई गोल नहीं दागा. टर्की एंड यूएस के बीच मैच हुआ तो टर्की ने 3 गोल बनाए, फुल टाइम हो चुका है. एंड ग्रुप आई में नॉर्वे और फ्रांस के बीच अभी गेम चल रहा है तो फ्रांस ने 3 गोल बनाए हैं, 55 मिनट्स हो चुके हैं. सेनेगल एंड इराक के बीच भी मैच चल रहा है, सेनेगल ने 1 गोल दागा है एंड 51 मिनट्स हुए हैं. डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: मिलाने की घड़ियां देखते हैं, टाइम कितना हुआ है, 9:20. इट्स 20 minutes past 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. सो हर रोज ही किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होता है, कुछ स्पेशल डे मनाया जाता है. तो आज मनाया जाता है नेशनल ब्यूटिशियंस डे, नेशनल टेक योर डॉग टू वर्क डे. आई सो विश मैं मेरी पीचेस को यहाँ पे लेके आ सकती. एनीवे शी इज यूज टू लाउड म्यूजिक, क्योंकि आरजे का घर है तो घर में गाने तो चलते ही रहते हैं. सो उसके लिए लाउड म्यूजिक और गाने का कोई प्रॉब्लम नहीं. इनफैक्ट शी वैग्स हर टेल जब भी वो गाने सुनती रहती है. ओके, होगा शायद मैं कभी उसको अपने स्टूडियो लेके आऊँ. नेशनल कैनोई डे, नेशनल स्टिच डे, नेशनल क्रीम टी डे, नेशनल क्रीम टी डे, क्रीम मतलब मलाई मार के जो चाय होती है वो वाली. कैंसर वेलनेस अवेयर डे, वर्ल्ड ड्रग डे, वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे, ड्रीम बिग डे. नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस, इज समथिंग इंटरेस्टिंग. वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे, ये जो चिलचिलाती धूप आप और हम महसूस कर रहे हैं, तो इस धूप से निजात यानी हमें कहीं ना कहीं राहत महसूस कराई है फ्रिज ने. हमारे घर का जो रेफ्रिजरेटर है उसने, उसमें हम ठंडी ठंडी चीज़ें रखते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें लेके खाते पीते हैं. एंड ऑब्वियसली इतनी धूप में जो खाना बाहर रखा होता है, इट गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द हाई वेदर, मतलब हाई टेम्परेचर्स जो फिलहाल हैं. सो ऑब्वियसली हमारी जो करीज होती हैं, वी हैव टू क्विकली कीप इट बैक इन टू द रेफ्रिजरेटर ताकि वो ख़राब ना हो. तो आज जाओ अभी आफ्टर लिसनिंग टू दिस, अपने रेफ्रिजरेटर को जाके लाड़ प्यार करो, उसे थैंक यू कहो कि हमारा फूड जो है वो अच्छा खासा रखता है, हमें ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम सारी चीज़ें देते हैं. एक्चुअली ग्रैटिट्यूड में हम देखो कितनी सारी चीज़ें करते हैं. इफ यू रिमेंबर मैंने कभी किसी शो में आपसे पूछा था कि आपके घर के जो अलग अलग रूम्स हैं या आपका जो घर है जहाँ आप रहते हैं, आई यू इन ग्रैटिट्यूड विद दैट प्लेस, बिकॉज रोज जहाँ जाके आप अपने आप से मिलते हो और अपने आप में रहते हो. सो डू वी से थैंक यू टू दीज थिंग्स. बिल्कुल कहते चलिए. देखिए नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी ना, तो भी यकीन मानिए आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिवली काम करती है. आई तो एवरी डे सिट इन, अभी यहाँ से जब मैं जाऊँगी वापस, आई ऑलवेज से गणपति बप्पा मोरिया. सो माई फ्रेंड कीप्स ऑन टीजिंग मी एंड शी इज़ लाइक, तू गणपति बप्पा के ऊपर छोड़ देती है ना ड्राइव करते समय. मतलब हाँ यार, उनकी जिम्मेदारी, मैं कितना ध्यान रखूँ, गाड़ी भी चलाऊँ, सिग्नल भी देखूँ, आसपास की गाड़ियों की तरफ भी ध्यान दूँ.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: We've all been there. Noisy uni flatmates, music blaring, phones going off in the library. But with long-lasting battery life on the lightweight and portable Dell XPS powered by Intel Core Ultra, you can get away from the distractions without needing to find a plug. So you can get back to, well, built for those who get things done. The Dell XPS. Built for you. Dell.co.uk/learning.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a gold.
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel at all protected.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ. एप्टाबॉन Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Welcome to the jungle.
6: Film? बिल्कुल fake.
5: हमारी film army वाली.
7: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
6: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
5: और स्टार कास्ट है
6: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
8: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
6: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
9: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
10: किस लिए फिल्म में?
11: टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबोथिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है. बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500. पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10. विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA.
12: एट ब्रेस्ट कैंसर नाउ वी नो चेकिंग योर ब्रेस्ट कैन फील डॉन्टिंग, बट इट्स एज सिंपल एज TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
13: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो LAIKAGOLD.COM पे.
14: Artist of the week is brought to you by our new podcast LAIKA Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: For £1, you'll get 124.51 Indian rupee, 366.89 Pakistani rupee, 443.65 Sri Lankan rupee, 162.3 Bangladeshi taka, 84.24 Afghan afghani, 170.85 Kenyan shilling, 1.31 US dollars.
1: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £99.42 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 43 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. तो भाई, अब जो लास्ट दो गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस थर्ड आवर में, एक होगा रास की बात कह दूँ तो, विच इज़ अ कव्वाली. जी हाँ, आज मैं आपको सुनाने वाली धर्मा फिल्म से है ये कव्वाली आप सभी के लिए. वॉल्यूम अप रख के सुनिएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा. उसके बाद लास्ट इज नन अदर देन माय नेम इज़ लखन. सो गोल्ड नाइट सर्विस हमारी ओवर नाइट सर्विस है, उसे ज़रूर सुनिएगा. लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2, ये इतने सारे हमारे रेडियो चैनल्स हैं. कल सुबह आएंगे हमारे दीप अपने मस्ती मज़ा लेके, उनका अंदाज ही कुछ अलग होता है, तो उनका साथ दीजिएगा. मैं आप सबसे मिलूंगी मंडे इवनिंग. मंडे से फ्राइडे रहता है आपका मेरा साथ, शाम 7 से 10 बजे तक. बस कल का दिन और गर्मी, परसों से ये पे वापस हम आ जाएंगे अपने 20s में और खेलेंगे 20s वाला पूरा माहौल. ऑन दैट नोट आई हैव टू से, प्यार लो, प्यार दो, जिंदगी ब्यूटीफुल है. अपना खूब ख्याल रखो. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय.
3: Leica Gold. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
4: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: Great news, Tariq Halal Radiance Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Radiance Lane, 287 Rainers Lane, Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Radiance Lane.
2: You asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
3: Latuke halone nandala.
2: Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागसन.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन.

0: ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गर्म हूँ।
1: अरे बाप रे बाप,
0: डर गया ना।

0: ये है लाइका गोल्ड। CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम।
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट्स।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Radio.
2: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Haze.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल At all protected.
4: Classic Nagme. आपके अपने लाइका गोल्ड पर
5: जाना है तो